हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, हाजिर हाँ जी। मैं अपना मेला प्रोग्राम लेके मैं ताड़ी दोस्त परमजीत अज दा प्रोग्राम लेके जेड़ा कि 1 to 2 बजे तक चलेगा। दोस्तों तुहानू पता ही है कि यह प्रोग्राम हर चौथे एतवार 1 to 2 बजे तक पेश किया जाता है रेडियो एडिलेट ते ते तुसी सुन रहे हो रेडियो एडिलेट 101.5। दोस्तों अज दे प्रोग्राम दे विच एक गैसट आए हुए ने मेरे नाल स्टूडियो दे विच, जिन्हां नाल मैं अज गल्लां बातां करांगी। पर गल्लां बातां दी शुरुआत करन तों पहलां क्यों ना ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।